0: कि क्षणतम बहदे बाण जो माता से रहित थीं पर नो न्यो बोले अफेट जो वाता साउदी बाकुम्ला से न पूजा बक्की ने पिसन
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.